0: हिम्मत ना, आइए हम लोग आनीमा देरी बजे कच्चा
1: ए समय को साथ मा जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए को डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो मा कुना को साइड मा
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुंदर हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है।

0: कागज के में थी वा
1: झिलकाई के
0: पर्सनल नंबर ब्लॉक लाई बाजी
1: पर्सनल मोबाइल नंबर में उन्हीं टेलीकॉमर बे ऑफिस तरी आई रा ब्लॉक लाई रखल खाई
0: अन्य बैंगरी
1: बैंगरी
0: आ
1: चार सही तले लल पड़ दी
0: सम लल पड़ी ना आपने ना मोबाइल नंबर फिर दिया बाजी रा ब्लॉक तय विषय आपने ना बैंक दे बिनी जानकारी पिन परिम दे आपने ना बैंक खाते ना जानकारी और ना योरी थोनी प्रज्ञा सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब द क्या जोगी ना
2: सिद्धार्थ बैंक क्या ले जन हितरी जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरी लाई
4: नमस्कार हल्दर साहब क्यानन तपाई त पाइल्सको अपरेशन गर्न अस्पताल जानुभएको छ भन्ने सुनेको थिए तपाई त छिट्टै आउनुभयो अपरेशन नगरी आउनुभयो क्या हो
5: क्यानन पोखराको चरक मेमोरियल हस्पिटलमा वरिष्ठ डाक्टरले आधुनिक प्रविधिबाट अपरेशन गर्दा त छिट्टै निको पो हुँदो रहेछ नि खान्छ
4: अच्छा ज्ञानम मेरो बुढीको पित्त थैलीको अपरेशन पनि त्यही चरक मेमोरियल हस्पिटलमा गरेको हो नि हल्दर साहब केही दिनमै मेरो बुढी त थमथम्ती हिँड्ने भाइ साह्रै राम्रो रहेछ त्यो हस्पिटल त अनि हल्दर साहब चरक मेमोरियल हस्पिटलमा हामी भारतीय भूभू सैनिकका लागि स्वास्थ्य सेवा ईसीएचएस स्वास्थ्य सेवा पनि छ नि
5: ज्ञानम त्यही भएर त चरक मेमोरियल हस्पिटलमा उपचार गर्न गएको हो नि
6: चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरामा भारतीय भूभू सैनिकका लागि स्वास्थ्य सेवा ईसीएचएस स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध
7: साथै ओपीडी सेवा आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 9 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म यो सेवा लिन ईसीएचएस कार्ड र रिफरल लिएर आउनुहोला पुनश 70 वर्ष माथिका भूपूहरूलाई रिफरल चाहिँदैन
6: विस्तृत जानकारीका लागि सरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरा फोन 061-552-493 552-494-582-778

एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनचांदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचांदी पसल वालिंग बजार सेंचा।

सुनो हटाओ कन्फ्यूजन कैसा सोलूशन इस कुल धुली डॉट कम कैसा सोलूशन इस कुल धुली डॉट कम।